फगवाड़ा की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पुलिस छावनी बनी हुई है। 48 घंटों का भारी तनाव, नेशनल वाड़ा की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पुलिस छावनी बनी हुई है। 48 घंटों का भारी तनाव, नेशनल हाईवे पर 18 घंटे का चक्का जाम, पुलिस की गाड़ियों में आगजनी, आंसू गैस के गोले, लाठी चार्ज और शॉपिंग मॉल में करोड़ों की लूट। और पूरे बवाल की वजह एक अफवाह जो शुरू हुई सोशल मीडिया पर एक अनवेरिफाइड मैसेज से, जिसमें गर्ल्स हॉस्टल में रेप का दावा किया गया। हालांकि पुलिस और प्रशासन इसे सिरे से खारिज कर रहे हैं, लेकिन कैंपस में 10 दिन की छुट्टी कर दी गई है, इंटरनेट बंद है और दहशत में स्टूडेंट्स घर लौट रहे हैं। सवाल ये कि क्या ये सिर्फ एक अफवाह का नतीजा था?

0: ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਫੋਟੋ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਚੇਂਜਸ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਈ ਵੈਬ ਗਾਈ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 403-400-0203-400-0203 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ www.iwebguy.ca
1: एयरड्री अब आपकी फैमिली की सेहत को मिल गया है एक नया घर
2: पेश है लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक जहां बेहतरीन देखभाल आपके बिल्कुल करीब है
1: मिलिए डॉक्टर मघर शाह और डॉक्टर समरीन रहमान से
2: हमारे तजुर्बा का डॉक्टर्स आपको देती है मुकम्मल केयर
1: खवातीन की सेहत से लेकर बच्चों की देखभाल और रूटीन चेकअप्स तक इंग्लिश हिंदी

0: और उर्दू में कंसल्टेशन दस्तियाब है।
1: नए पेशेंट्स का खैर मकदम है और वॉक इन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले हैं।
0: आज ही विजिट करें किंग्स व्यू बुलेवर्ड पर या कॉल करें 587-360-6890 687-360-6890 लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक।
1: आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी।
2: नमस्ते सत श्री अकाल आदाब। लिसनिंग टू कंट्रीज मोस्ट पॉपुलर रेडियो रेडियो सबरा 94.7 एफएम।
3: टेक योर बिजनेस बियॉन्ड वॉल्स एंड स्ट्रेट टू योर ऑडियंस। Sabrong Radio now comes live to your location, bringing energy, excitement, and real-time engagement. From store openings to special events, from product launches to community celebrations, we don't just promote your business, we create an experience your customers remember. Our team reaches your venue, connects with the crowd, and broadcasts your brand across a wide 250-kilometer network. More visibility, more trust, more customers. Let your business be seen, heard, and celebrated. Book your live promotion today with Sabrong Radio. Your brand, on air and on ground. Visit sabrong.ca or call 403-400-0203.
4: फगवाड़ा की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पुलिस छावनी बनी हुई है। 48 घंटों का भारी तनाव, नेशनल हाईवे पर 18 घंटे का चक्का जाम, पुलिस की गाड़ियों में आगजनी, आंसू गैस के गोले, लाठी चार्ज और शॉपिंग मॉल में करोड़ों की लूट। और पूरे बवाल की वजह एक अफवाह जो शुरू हुई सोशल मीडिया पर एक अनवेरिफाइड मैसेज से, जिसमें गर्ल्स हॉस्टल में रेप का दावा किया गया। हालांकि पुलिस और प्रशासन इसे सिरे से खारिज कर रहे हैं, लेकिन कैंपस में 10 दिन की छुट्टी कर दी गई है, इंटरनेट बंद है और दहशत में स्टूडेंट्स घर लौट रहे हैं। सवाल ये कि क्या ये सिर्फ एक अफवाह का नतीजा था या इसके पीछे कुछ बाहरी तत्व और छात्रों का बरसों पुराना गुस्सा भी था, सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। ये पूरा बवाल एक सोशल मीडिया मैसेज से भड़का। बात 26 सितंबर देर रात की है। रेडिट से निकला एक मैसेज एलपीयू के व्हाट्सएप और इंस्टा ग्रुप पर तेजी से वायरल होने लगा। दावा कि कोई बाहरी व्यक्ति 23 सितंबर को गर्ल्स हॉस्टल में घुस आया और उसने एक छात्रा के साथ रेप भी किया, और यह भी कि वार्डन ने मामले को दबाने की कोशिश की और कथित पीड़िता ने अपनी जान दे दी। ये अनवेरिफाइड मैसेज। रात के करीब 2 बजे हजारों की संख्या में छात्र कैंपस में इकट्ठा हो गए, मेन गेट की तरफ मार्च हुआ और तोड़फोड़ भी शुरू हो गई। गमले तोड़े गए, यूनिवर्सिटी के लोगों वाले स्ट्रक्चर गिराए गए, कुछ लोग कैंपस में डिस्प्ले के लिए रखे गए रिटायर किए जा चुके MiG-23 एयरक्राफ्ट पर चढ़ गए, तो कुछ ने वहां पर खड़े जो पुराने मिलिट्री टैंक थे, रिटायर हुए, डीकमीशन हुए, उन पर भी कब्जा कर लिया। 27 सितंबर की सुबह होते होते छात्रों ने दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे NH-44 भी जाम कर दिया। ये उग्र भीड़ 26-27 सितंबर की दरमियानी रात कैंपस गेट की तरफ जब बढ़ रही थी, ठीक उसी वक्त कैंपस के भीतर भी एक अलग किस्म का उपद्रव चल रहा था। एक बहुत बड़ा कमर्शियल स्पेस है एलपीयू के अंदर, जिसे यूनी मॉल कहते हैं। ये यूनिवर्सिटी का नहीं है, किराए पर दुकानें दी गई हैं, प्राइवेट लोग व्यापार करते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्टर अंजू अग्निहोत्री शाबा के मुताबिक भीड़ यूनी मॉल में घुस गई, तोड़फोड़ की, तस्वीरें गवाह हैं। आप देख सकते हैं कैसे थैलों में भरकर लूट कर सामान ले जाया जा रहा है। लड़कों को कहते सुना जा सकता है भाई फ्री में शॉपिंग चल रही है। इसी मॉल में मोबाइल शॉप चलाने वाले ने अपने टूटे काउंटर्स दिखाते हुए बताया कि मैंने हाल ही में 21 लाख रुपए के नए मोबाइल फोन और एक्सेसरीज मंगाए थे। इसके अलावा 8 लाख का माल पहले से दुकान में रखा था, अब कुछ नहीं बचा, सब लूट लिया। इसी तरह एक लैपटॉप स्टोर के मालिक ने बताया कि उनकी दुकान का शटर तोड़कर लाखों के लैपटॉप गायब कर दिए गए। एक और दुकानदार ने कहा कि महंगे कॉस्मेटिक्स, ब्रांडेड जूते, कपड़े और टी शर्ट सब लूट लिए गए। दुकानदारों का सबसे बड़ा और जायज सवाल कि अगर छात्रों को यूनिवर्सिटी प्रशासन से दिक्कत थी तो उसकी सजा हम दुकानदारों को क्यों दी गई, हम आम इंसान है, हमारा कसूर क्या है और लाखों के नुकसान की भरपाई कौन करेगा। फिलहाल दुकानदार अपने परचेज बिल इकट्ठे कर रहे ताकि पुलिस में औपचारिक शिकायत दर्ज कर सके। मॉल में मची इस लूट से एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ कि क्या प्रदर्शन करने वाले सभी लोग एलपीयू के छात्र थे या भीड़ में बाहरी लोग भी शामिल थे। कई वीडियो सामने आए, गाड़ियों में भर भर कर लोग यूनिवर्सिटी की सड़कों पर घूम रहे और दावा कि ये बाहरी थे जिन्होंने छात्रों के प्रदर्शन की आड़ में लूटपाट की साजिश रची। सबसे खौफनाक मंजर एलपीयू के गर्ल्स हॉस्टल का था। वीडियोस में साफ दिख रहा कि डंडे लिए कुछ लड़के गर्ल्स हॉस्टल के नीचे घूम रहे हैं। जब ये बिल्डिंग में घुसे तो लड़कियां चीखती हुई कमरों की तरफ

0: भागने लगी। एक वीडियो में यह भी दिखा कि तीन लड़कियां अपने कमरे में डरी सहमी बैठी हैं और बाहर से कोई लगातार उनका दरवाजा पीट रहा। दहशत में लड़कियां कहती हैं, दरवाजे पर बेड लगाओ, फटाफट लगाओ, अलमारी भी लगा दो। इन तीन लड़कियों से इतर दूसरी तीन लड़कियों का भी एक वीडियो जिसकी काफी अहम भूमिका बताई जा रही है। दावा किया गया कि ये लड़कियां उस कमरे में रहने वाली हैं जहां पर कथित तौर पर बदसलूकी हुई या यौन अपराध का मैसेज वायरल हुआ, ये दावा किया गया। 27 सितंबर को यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इन लड़कियों का एक वीडियो जारी किया जिसमें वो कह रहे हैं कि पिछले 2 महीने से हम इसी कमरे में रह रहे हैं और यहां किसी भी तरह का कोई अपराध नहीं हुआ है। लेकिन छात्रों ने कहा कि ये मामले को रफा दफा करने के लिए प्रशासन लड़कियों पर दबाव डाल के बनवा रहा है और इसे चालाकी से ट्रिम भी किया गया, इसकी कतर व्योंद भी की गई है। प्रदर्शनकारी ऐसे दावों के साथ NH-44 पर जाम लगाए रहे। कपूरथला के SSP गौरव तूरा, जलंधर रेंज के DIG नवीन सिंगला मौके पर पहुंचे, उनसे बात की, बताया कि शुरुआती जांच में ना तो रेप की पुष्टि हुई ना ही किसी के जान देने का सबूत मिला, पर छात्र जिद पर अड़े रहे। बोले, जब तक रेप की FIR कॉपी उनके हाथ में नहीं आएगी हाईवे खाली नहीं होगा। इसके बाद पुलिस ने फगवाड़ा के सतनामपुरा थाने में कथित रेप की FIR दर्ज की। इसमें पीड़िता का नाम नहीं है ना ही आरोपी का, FIR की कॉपी दिखाई गई। पुलिस को लगा कि अब मामला शांत हो जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। छात्रों ने नई मांग सामने रखी, बोले कि जब तक लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के फाउंडर चांसलर अशोक मित्तल खुद आकर बात नहीं करेंगे, न्याय का भरोसा नहीं दिलाएंगे, तब तक प्रदर्शन चलता रहेगा। अशोक मित्तल राज्यसभा के सांसद हैं। राघव चड्ढा के साथ जो खेमा बीजेपी में आया था आम आदमी पार्टी से टूट के, उस सांसद हैं। राघव चड्ढा के साथ जो खेमा बीजेपी में आया था आम आदमी पार्टी से टूट के, उसके मेंबर हैं और इसी साल अप्रैल में उन्होंने ये पाला बदला था। नई मांग के बीच 27 सितंबर की रात करीब 8 बजे हालात और बिगड़े। पुलिस पर पानी की बोतलें और पत्थर फेंके जाने लगे। जवाब में लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले दागे गए। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की 3 गाड़ियों में आग लगा दी। रात 12 बजे तक पुलिस ने किसी तरह भीड़ को खदेड़ा और करीब 18 घंटे बाद दिल्ली अमृतसर हाईवे चालू हुआ। फिर 28 सितंबर को पंजाब के DGP गौरव यादव खुद LPU पहुंचे और बोले, अफवाहें फैली थी, हमने स्थिति को काबू करने के लिए कम से कम बल का इस्तेमाल किया है और SIT भी बना रहे हैं।
1: जरा इंसिडेंट होया सी उस बारे FIR दर्ज की गई, तो FIR दर्ज करने तो बाद एक हाई लेवल स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है जी, उस काफ़ी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन इंसीडेंट की की जाऊगी। जिहड़े ग्रीवेंसेस सीगे विथ यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू जिवें गर्ल्स होस्टल दे विच दे वांटेड लेडी स्टाफ ओनली, देयर वर सर्टेन अदर मैटर्स, तो उसनों भी एज अ ब्रिज असी उसनों सॉर्ट आउट करता सी।
0: जानकार कह रहे हैं कि इस पूरे विवाद को सिर्फ एक रात की अफवाह या फेक न्यूज के नजरिए से देखना एक तरफा और सतही होगा। बीते वर्षों में LPU छात्रों और प्रशासन के बीच अविश्वास की खाई बनी है। कैंपस सिक्योरिटी, अटेंडेंस सिस्टम, अनुशासन बनाने का UMC मतलब अंडर मींस केस, संवाद की कमी और यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट यूनियन की गैर मौजूदगी, ये सारी वजहें छात्रों ने गिनाई।
2: बाद में बहुत कूदफांद हुई थी, मैनेजमेंट भी अब क्या ही कर सकती थी, बहुत ज्यादा भीड़ हो गई थी उस वक्त और बाहर से ज्यादा अंदर बच्चों ने बाहर बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट का एकदम प्लान था रूवो पार्क में, बट बाहर से जो बच्चे आए थे उन्होंने एकदम से खराब कर दिया था सीन।
3: जैसे जैसे वो आगे आए तो जो हमारे नेक्स्ट बॉयज हॉस्टल है वैसे वैसे वो सारे इकट्ठे होते गए, फिर गेट तोड़ते गए और जो हमारी न्यूज है जो वो ये वाला हॉस्टल है गर्ल्स हॉस्टल 3rd जहाँ की ये न्यूज है।
4: ये फोर
3: है, वो थ्री है जहाँ का वो र्यूमर फैला हुआ या र्यूमर है या न्यूज है। तो सारे जो बॉयज थे वो इकट्ठे हुए जो कि लास्ट ब्लॉक हमारा एग्रीकल्चर ब्लॉक, वहां से आए यहाँ तक जो कि 1.5 किलोमीटर रास्ता पड़ता है और यहाँ से गर्ल्स ने ये बात उनको बाया व्हाट्सएप ग्रुप कन्वे की थी कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ है या मतलब हुआ ऐसा कुछ अभी कन्फर्म नहीं है। तो उसके बाद इन्होंने सोचा कि हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए और जब प्रोटेस्ट किया तो सारे मूव हुए क्योंकि ज्यादा जनता थी, लोग थे। जैसे ही मूव हुए तो ये पहुंचे गेट पर, मेन गेट पर, कि हम वहां प्रोटेस्ट करेंगे। पता नहीं कैसे हुआ क्या हुआ, वहां से आउटसाइडर अंदर एंटर हुए।
5: बाहर के लोग जो हैं लोकल्स हैं कुछ मे बी वही सुनने में आ रहे, तोड़ फोड़ वो ज्यादा कर रहे। स्टूडेंट्स ने जिस दिन प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था हम लोग भी पीसफुली वो पार्क में बैठ के ही कर रहे थे, पर उसके बाद जब रात को गेट टूटा, गेट टूटने के साथ साथ बाहर के लोग भी आ गए अंदर, तो उनमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जिन्होंने तोड़फोड़ ज्यादा स्टार्ट करी। हमें भी अच्छा नहीं लग रहा हमारी यूनिवर्सिटी को ऐसे खराब होते हुए देख के।
0: इसी बैकग्राउंड में स्टूडेंट्स ने पुलिस और प्रशासन के सामने 5 स्पष्ट मांगे रखी। कथित पीड़िता को जल्द से जल्द न्याय, गर्ल्स हॉस्टल की कड़ी सुरक्षा, सिर्फ महिला स्टाफ की तैनाती, वार्डन का इस्तीफा, लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की जवाबदेही, यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम को ब्लॉक ना किया जाए, प्रदर्शन में शामिल छात्रों के खिलाफ बदले की भावना से कोई कार्रवाई ना हो। इधर

0: यूनिवर्सिटी प्रशासन ने अगले 10 दिन तक क्लासेस सस्पेंड कर दी, मिड टर्म एग्जाम अनिश्चितकाल के लिए टाल दिए, इंटरनेट बंद कर दिया। ऐसे में बहुत से छात्र अपने घर लौट रहे हैं।
1: अथॉरिटीज ने ये अनाउंस कर दिया कि हम यूनिवर्सिटी बंद कर रहे हैं फॉर नेक्स्ट 10 डेज, और अगर स्टूडेंट्स अंदर रहना चाहते हैं तो वो अपनी सेफ्टी से अंदर रहें, या वो घर जाना चाहते हैं तो अपने पेरेंट्स के या गार्डियन की कंसल्टेशन से सब जा सकते हैं। और काफी सारे स्टूडेंट्स ने यही डिसाइड किया कि वो जाना चाहते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स ये भी कह रहे थे कि कल रात को भी आउटसाइडर्स आए थे और वो गर्ल्स हॉस्टल के बाहर घूम रहे थे, तो लड़कियां काफी डरी भी हुई थी। तो आज सुबह काफी सारे बच्चे जो है वो वापस चले गए हैं, जिसमें लड़के लड़कियां दोनों ही थी। और जिस लड़की या विक्टिम की बात की जा रही है उसके बारे में किसी भी स्टूडेंट ने हमें अभी तक कुछ नहीं बताया कि वो कौन है, लड़की कहाँ की है और किस स्टेट की है। और जिस रूम नंबर की वो बात कर रहे हैं, उस रूम नंबर की लड़कियों ने भी ये अपना स्टेटमेंट दी है कि इस रूम में हम रहते हैं, हमारे साथ यहाँ पे, हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो अब ये जो यूनिवर्सिटी कह रही है वो यही कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो अब ये कितना सच है, कितना इसमें र्यूमर्स है, ये सब अब इन्वेस्टिगेशन की बात है।
0: एक्सप्रेस रिपोर्टर कंचन वासुदेव और अंजू अग्नोत्री ने हमसे बात की। पूर्वोत्तर भारत की एक छात्रा ने कहा, मैं हॉस्टल में रुक सकती थी लेकिन कल रात जो हुआ उसके बाद मैं खुद को सेफ फील नहीं कर रही। मुझे प्रदर्शन करने वाले साथी छात्रों से डर नहीं है, डर उन बाहरी गुंडों से जो भीड़ का फायदा उठाकर कैंपस और गर्ल्स हॉस्टल तक पहुंच गए। यूनिवर्सिटी हमारी सुरक्षा को लेकर जरा भी गंभीर नहीं है। इधर प्रशासन का कहना है कि जो छात्र घर नहीं जाना चाहते वो हॉस्टल में रुक सकते हैं, लेकिन उन्हें बेवजह बाहर नहीं घूमने दिया जाएगा। मौजूदा हालात के बारे में और जानकारी दे रही हमारी साथी स्वाति।
2: क्लासेस बंद कर दी हैं, एग्जाम्स होने थे, फोर्थ ईयर के जो बच्चे थे उनके यहाँ कैंपस में कुछ कंपनियां भी आने वाली थी, वो सब फिलहाल होल्ड पर है अगली जो तारीख आने तक। और ज़्यादातर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर जब सुबह आए और उसके बाद पूरे दिन हम देखते रहे कि लगातार स्टूडेंट्स बाहर जा रहे थे, अपने अपने घरों को जा रहे थे। और ये भी नहीं कहा जा सकता फिलहाल कि स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि 10 दिन का मतलब 10 ही दिन है और क्या उसके बाद क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तो बहुत सारी ऊहापोह की स्थिति है और मतलब कंफ्यूजन भी बहुत सारी है। तो इन सारी स्थितियों के बीच यहाँ ये कैंपस फिलहाल पुलिस की छावनी में तब्दील हो गया है। अब आपको नेशनल हाईवे भी जो कल जाम था, वहां पे काफी व्यवधान था, वो अब सुचारू रूप से काम कर रहा है। और अगल बगल आप देख सकते हैं, जहां तक आप देख पाएंगे, पुलिस के सारे आला अधिकारी इधर भी उधर सब जगह बैठे हुए पुलिस कर्मी।
0: अब सवाल कि पंजाब की भगवंत मान सरकार क्या कर रही है। कहा गया कि पुलिस को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। पंजाब महिला आयोग ने कपूरथला के डिप्टी कमिश्नर और SSP से FIR की कॉपी, SIT रिपोर्ट और गर्ल्स हॉस्टल में सुरक्षा इंतजामों की जानकारी भी तलब की है। मामला पॉलिटिकल भी हुआ। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा बोले कि आप और बीजेपी की मिलीभगत वाली राजनीति का जीता जागता उदाहरण है। एक पार्टी के सांसद की यूनिवर्सिटी और दूसरी पार्टी की राज्य में सरकार है। इसी नेक्सस की वजह से पुलिस ने शुरुआत में FIR दर्ज करने में आनाकानी की, जिससे छात्रों का गुस्सा भड़का और हालात बेकाबू हुए। उधर पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता रवनीत सिंह बिट्टू ने पोस्ट किया और लिखा कि पंजाब के लोग बीजेपी के ड्रग्स फ्री कैंपेन को जिस तरह का समर्थन दे रहे हैं, आम आदमी पार्टी घबराई हुई है, इसलिए ध्यान भटकाने के लिए LPU में यह सब किया गया है।

जांच की जा रही है। गोयल्फ जनरल हस्पताल अनुसार इस घटना च लगभग 60 लोग जख्मी हुए, जिन्हां विच सिर ते बोतलां लगण वाले कट्टण दे जख्म ते शराब दी ओवरडोज वाले मरीज शामिल सन। एमरजेंसी विभाग दे मुख डॉक्टर एलेक्स फोलकल ने कहा कि हस्पताल ते अचानक बहुत ज्यादा बोझ पै गया सी, जिस नाल होर गंभीर मरीजां दे इलाज च खतरा पैदा हो सकदा सी। गोयल्फ दे मेयर कैम गुथरी ने इस घटना ते सख्त नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि एमरजेंसी सेवावां ते बोतलां सुटना, दुकानां दे शीशे तोड़ना ते अग लगाउणा बिल्कुल अस्वीकारण योग है। प्रशासन ने कहा कि अजिहे गैर जिम्मेवाराना व्यवहार की समाज च कोई थां नहीं है। यूनिवर्सिटी के प्रधान रेने वैन एकर ने दुख प्रगट करदिया कहा कि इस घटना ने होरना विद्यार्थियों ते लोगों की सुरक्षा नूं खतरे च पाया। उन्होंने स्पष्ट किया कि नियम तोड़न वाले विद्यार्थियों खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नाल ही उन्होंने उन्हां चंगे विद्यार्थियों का धन्यवाद किया, जिन्होंने अगली सवेर इलाके की सफाई च मदद की। सरी दे रहण वाले पंजाबी मूल दे अमृतपाल सिंह नूं लोटो 649 तों 32 मिलियन डॉलर की लॉटरी निकली है। यह ड्रा 19 सितंबर नूं निकलिया ते अमृतपाल ने यह टिकट सरी दे एक 7-11 स्टोर तों खरीदी सी। अमृतपाल मुताबक पहलां उसने रकम नूं 32,000 समझा, पर दोबारा देखण ते उसनूं समझ आया कि यह 32 मिलियन है। अमृतपाल ने कहा कि मैं अपने ते होरां फोनां ते जेतू राशि नूं देखिया। अमृतपाल ने सब तो पहला जेतू इनाम बारे अपनी भैण नूं दस्या। उसने कहा कि मेरी भैण भावुक हो गई। अमृतपाल अपनी जित दा जशन परिवार नाल मनाउण दी योजना बना रहा है, हालांकि वह इस अचानक मिली वड्डी रकम की वरतों करन बारे फैसला नहीं लै सकिया, पर उसने दस्या कि वह अपने माता पिता ते भैण की मदद करना, एक घर खरीदना ते कुछ कारां लैणा चाहुंदा है। लोटो 649 एक देश व्यापी लॉटरी खेड है, जिस दे ड्रा बुधवार ते शनिवार नूं शाम 7:30 बजे कढे जांदे ने। 2026 च हुण तक बीसी च लोटो 649 तों वख-वख लोक 85 मिलियन डॉलर तों वध दी रकम जित चुके ने। इस गर्मी दे सीजन च यात्रियों लई एक चंगी खबर सामने आई है, क्योंकि देश दे सब तो बिजी हवाई अड्डिया ते फ्लाइट्स दी देरी विच रिकॉर्ड सुधार देखण नूं मिलिया है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल दी जिम्मेवारी संभालण वाली संस्था नेव कैनेडा ने एक बयान जारी करदिआं दस्सिया कि इस साल मई तो अगस्त दरमियान देश दे चार वड्डे हवाई अड्डिया टोरोंटो पियरसन, मोंट्रियल ट्रूडो, कैलगरी अते वैनकूवर इंटरनेशनल ते सेवावां च वड्डा सुधार होया है। 1 मई तो 31 अगस्त 2026 दे दरमियान देरी दा सामना करन वालियां फ्लाइट्स दी गिणती च 2025 दे मुकाबले 85% दी कमी आई है। इस सुधार जुलाई च होए फीफा विश्व कप दे दौरान देखण नूं मिलिया, जदों दुनिया भर तों लखां यात्री कैनेडा पहुंचे सन। साल 2025 च इसे समय दौरान 4,996 फ्लाइट्स दी देरी रही, जबकि इस साल यह गिणती घट के सिर्फ 769 फ्लाइट्स रह गई है। यह सुधार उदों होया जदों इन्हां चारां हवाई अड्डियां ते उड़ाणा दी गिणती 0.9% वध के 3,94,919 हो गई सी। सब तो वड्डा सुधार वैनकूवर हवाई अड्डे ते देखा गया, जिथे देरी 4.42% तो घट के 0.64% रह गई। टोरोंटो पियरसन सब तो वधिया प्रदर्शन करन वाला हवाई अड्डा रहा, जिथे सिर्फ 0.04% उड़ाणा च देरी हुई। इस तो बाद कैलगरी च 0.05% ते मोंट्रियल च 0.28% फ्लाइट्स दे विच देरी दर्ज की गई। हालांकि कैनेडा दे हवाई अड्डियां ते अजे भी स्टाफ दी कमी है, पर इस विच भी सुधार आया है। बसंत दे सीजन च 200 एयर ट्रैफिक कंट्रोलरां दी घाट सी, जो अगस्त तक घट के 170 रह गई। दूजे पासे प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने ऐलान किया कि केंद्र सरकार देश दे इन्हां चार वड्डे हवाई अड्डियां च निजी निवेश लियाउण दी योजना ते काम कर रही है। यह नवा मॉडल दुनिया के होर देशां दे बेहतरीन तरीकों ते आधारित होवेगा, पर जमीन अते जायदाद दा मालकाना हक सरकार कोल ही रहेगा। एक खोज अनुसार जदों निजी कंपनियां हवाई अड्डियां च निवेश करदियां ने तां उत्थे सुविधावां, नवें टर्मिनल ते गेट वधदे ने अते फ्लाइट्स रद्द होण दी समस्या घटदी है। हालांकि इस नाल हवाई जहाजां दा सफर महंगा भी हो सकदा है, क्योंकि निजी कंपनियां एयरलाइंस तों ज्यादा फीस वसूलदियां ने। अलबर्टा सूबे च पुलिस ने एक 17 साल नाबालग नूं गिरफ्तार किया है। उस ते एक अजिहे गैंग नाल जुड़े होने का दोष है, जिस नूं कैनेडा च अत्तवादी संगठन घोषित किया गया है। इस इलाके तो अजिहा दूजा मामला है। इस तो पहला भी एक 15 साल नाबालग नूं गिरफ्तार किया गया सी। यह गैंग, जिस नूं 764 नेटवर्क कहा जाता है, इंटरनेट राही बच्चों अपने जाल च फसाउंदा है। यह कोई आम अपराधी गिरोह नहीं, सगो दुनिया भर च फैलिया एक अजिहा जाल है, जिसका मकसद सिर्फ हिंसा ते नफरत फैलाउणा है। यह अपराधी टिकटॉक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, डिस्कार्ड वर्गियां सोशल मीडिया एप्स अते रोबलॉक्स, माइनक्राफ्ट वर्गियां ऑनलाइन गेम्स राही बच्चों तक पहुंचते हैं।
ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ

0: ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਫੋਟੋਜ਼ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚੇਂਜਸ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਈ ਵੈਬ ਗਾਇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 403-400-0203-400-0203 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ www.iwebguy.ca
1: एयरड्री अब आपकी फैमिली की सेहत को मिल गया है एक नया घर
2: पेश है लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक जहां बेहतरीन देखभाल आपके बिल्कुल करीब है
1: मिलिए डॉक्टर मघर शाह और डॉक्टर समरीन रहमान से
2: हमारे तजुर्बाकार डॉक्टर्स आपको देते हैं मुकम्मल केयर
1: खवातीन की सेहत से लेकर बच्चों की देखभाल और रूटीन चेकअप तक इंग्लिश हिंदी और उर्दू में कंसल्टेशन दस्तियाब है
2: नए पेशेंट्स का खैर मकदम है और वॉक इन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले हैं
1: आज ही विजिट करें किंग्स व्यू बुलेवर्ड पर या कॉल करें 587-360-6890 687-360-6890 लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक
2: आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी
3: अपने बिजनेस को दीवारों से बाहर निकालिए और सीधे अपने ग्राहकों तक पहुंचाइए सबरंग रेडियो अब आता है लाइव आपके लोकेशन पर जहां होता है एनर्जी एक्साइटमेंट और रियल कनेक्शन चाहे हो आपकी शॉप ओपनिंग कोई खास इवेंट प्रोडक्ट लॉन्च या कम्युनिटी सेलिब्रेशन हम सिर्फ प्रमोशन नहीं करते हम आपके ब्रांड को एक यादगार अनुभव बना देते हैं हमारी टीम पहुंचती है आपके पास लोगों से जुड़ती है और आपकी पहचान को फैलाती है पूरे 250 किलोमीटर के नेटवर्क में ज्यादा पहचान ज्यादा भरोसा ज्यादा ग्राहक अपने बिजनेस को बनाइए खास दिखाइए सुनाइए और सेलिब्रेट कराइए आज ही बुक कीजिए सबरंग रेडियो के साथ आपका ब्रांड ऑन एयर भी और ऑन ग्राउंड भी Monday, Tuesday, Thursday, and Friday, 7 to 8 p.m. Sunday, 1 to 5 p.m.
4: Asia Pacific Immigration Consulting Limited. Student visa, visitor visa, super visa, LMIE applications, family immigration, provincial nominee application, ate citizenship application which lamba tajruba te maharat rakhta hai. Tuhadi sahulat layi main Maninder Singh Tillo ate Inderjot Kaur Tillo ikko chhat hai immigration ate insurance diyan sewawan pradan karde hain. Sanu sampark karn layi 403-225-1111 Maninder Singh Tillo Asia Pacific Immigration Consulting Limited.
5: Regulated Canadian Immigration Consultant.
4: 403-225-1111.
3: From the heart of Calgary to every corner within a 250 kilometer reach, Sabrang Radio is connecting voices, stories, and communities like never before. Whether you're in Calgary, Airdrie, Chestermere, Cochrane, or tuning in from Okotoks, High River, Strathmore, and beyond, we are one sound, one family, one Sabrang. Feel the rhythm, celebrate the culture, and stay connected with voices that matter. More events, more stories, more celebrations are on the way, only on Sabrang Radio, your voice across every mile. Visit our official website, www.sabrang.ca,

0: Yeah, Nadia, hello, Nadia, Manji, Ali Madad, how are you?
1: I'm doing good, Malari Madad, how are you?
0: Oh, thanks for coming towards Worst Bowling, everyone.
2: Malari Madad, how are you?
0: There you go.
1: Nice to see you.
0: Yes, nice to see you too. So, unke right pe hain Arjun, jiya Karan Arjun ke Arjun yahan par maujood hain. Arjun bhai, assalamu alaikum, namaste, kaise hain aap?
3: Namaste, all good, all good.
0: All good, thanks for coming in.
2: Sure, no
0: problem. Unke saath, unko koon nahi jaanta. Jiya, amar Sanjeev bhai, amar Sanjeev, thank you so much for coming. Good to see you again.
3: Thank you, Jalal bhai. Thank you so much.
0: Mera naam
3: Sanjeev
0: Nagpa. Ji, thank you so much. And unke barabar mein. Thakurain, hamari Calgary ki. Sunita ji, yahan par mujhe. Sunita ji, kaisi hain? Aap thaki thaki lag rahi hain.
2: Aake
4: kar liye. Roz dod rahi ho na. Namaskar. Aap sabko. Thank you, aapne hum sabko time diya.
0: Aaj walk
4: kar rahe hain. Jab tak 4 October ko walk kar rahe nahi ho jati. तब तक मैं आराम से बैठ नहीं सकती
0: इसलिए स्टार्ट विद द वॉक जो कि अपना 4 तारीख होने जा रहे प्रेविन स्मार्ट में नाउ व्हाट्स गोना हैपन दैट डे व्हाट्स द रन ऑल अबाउट
1: द रन इज अबाउट एनकरेजमेंट
0: ओके आई लाइक दैट
1: मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ एंड ऑल एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ जब आप वॉक करते हैं व्हेन यू आर वॉकिंग यू आर मूविंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ग्रोथ एंड
0: राइट
1: Also physical fitness.
0: Right.
1: So ये जो walk है वो एक सिर्फ walk नहीं है एक community को साथ लाने का एक awareness का एक opportunity है जहाँ पे हम सबको एक इकट्ठा कर रहे हैं और ये promote कर रहे हैं कि किस तरीके से हम stronger together बन सके इसलिए इसको stronger together किया गया है community को लेकर हम चाहते हैं कि हर कोई हर इंसान जो आजकल हम digital world में है phones के साथ लगे रहते हैं या अपने जो मसरूफियात है हमारी उसको लेकर हम हमेशा से जो है वो अपनी प्रायोरिटीज को शिफ्ट करते रहते हैं और सबसे ज्यादा हम लास्ट में अपनी हेल्थ को रखते हैं जब तक कि हम उस स्टेज पर ना पहुंच जाए कि अब हमें जरूरत है या शायद हमें फिजियो के पास जाने की जरूरत है तब तक हम लोग जो है वो पुश करते रहते हैं तो ये एक अवेयरनेस है इस वॉक की जो सिर्फ आपको ना सिर्फ आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहा है कि आप यहाँ पे आके करें और आपको एनकरेजमेंट मिलेगी क्योंकि करेज इज द फर्स्ट स्टेप यू टेक फॉर योर हेल्थ टुवर्ड्स योर वेलबींग सो आई थिंक दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस टू गेट टुगेदर एंड सपोर्ट दिस ग्रेट कॉज एंड प्रमोट गुड हेल्थ फॉर एवरीबॉडी
0: Yeah, very well said.
2: This is a great initiative you people have taken. Aur aap to Sunita ji hamesha kuch na kuch achhi cheezein karti rehti hain. And it's so good that you are a role model for the your age group people and which they don't do. I know so many, they just give up and don't do anything. But aapki wajah se kaafi logon ko encouragement milti hai aur aapke saath aapki team hai. And especially Nadia because, you know, jaise unhone kaha mental health and physical health both go together so this is very important bahut bahut shukriya aap is tarah ke program aap laate hain taaki logon ko awareness ho ke it's very important to be walking and taking care of themselves yeah thank you
0: okay arjun bhai aapka kya role hai inke sath about the walk and
2: yeah
3: I'm a physiotherapist
0: okay nice.
3: अगर कुछ हो जाता है इंजरीज होती है तो वहाँ पे सो विल बी स्टैंड बाय
2: मोस्ट
3: इम्पोर्टेंट पार्ट
0: ओके
3: ऑब्वियसली इंट्रोडक्शन नादिया हैज ऑलरेडी गिवन सच अ एक्सीलेंट इंट्रोडक्शन अबाउट दिस दैट आई डोंट ऐड एनीथिंग ऑन द टॉप ऑफ दैट मुझे बस यही लगता है कि जैसे ये एज अ इन्वेस्टमेंट है आपके फ्यूचर हेल्थ के
0: वेरी वेल सेड यस
3: तो आप ये नहीं कि आपको 10,000 स्टेप कंप्लीट करने एक ही दिन में स्टार्ट विथ समथिंग स्मॉल कीप द कंसिस्टेंसी वो आपको आगे लेके जाएगा हेल्थ की तरफ अच्छे हेल्थ की तरफ दैट्स व्हाट आई वांट टू से बट एज अ फिजियोथेरेपिस्ट और डॉक्टर दुपर के साथ वी आर क्लोजली टुगेदर एज अ टीम एज वेल सो एनी इंजरीज हैपेंस देयर वी आर देयर टू हेल्प आउट बेसिकली मैं उस साइड की टीम में हूँ जहाँ पे आपको राइट अवे कुछ हेल्प चाहिए एवरीथिंग नीडेड
0: यू आर देयर
2: गुड और आपका क्या रोल है
5: जैसे आपने सुना अभी बाकी उन्होंने बहुत ज्यादा कवर कर दिया मेरा रोल तो इतना ही है कि वो रेडस्टोन वाले जो हरियाणा वाले ग्रुप वाले उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप आए हमें ज्वाइन करें ये वॉक सब मिलजुल के हर कम्युनिटी से आए मैं अपने बारे में यही बताना चाहता हूँ आई एम प्रेसिडेंट ऑफ रेडस्टोन कम्युनिटी एसोसिएशन सो वो हमने इवेंट कुछ किए वहाँ पे तो बहुत अच्छे रहे हैं तो पब्लिक को थोड़ा है कि यू नो कुछ समथिंग पब्लिक के लिए कुछ अच्छा करना
2: चाहिए
5: तो सुनीता जी से मुलाकात हुई तो बोले कि क्यों ना कि आप हमें इसमें भी हेल्प करें तो वहां से हम जो हरियाणा ग्रुप के आई एम आल्सो प्रेसिडेंट ऑफ हरियाणा सोसाइटी ऑफ कैलगरी
2: ओके
5: तो

0: उनको भी रिक्वेस्ट की है, जो भी हरियाणा वाले भाई मेरे को सुन रहे हैं या कोई बहन भाई सब, तो सबको रिक्वेस्ट यही है कि वहाँ आए और सुनीता जी का देखो इस टाइम इनका एक यू नो वो है कि 24/7 ये आई हैव आइडिया बिकॉज आई हैव डन दैट सो मेनी इवेंट्स लाइक दैट, कितना उसके ऊपर काम आपको फोकस करना पड़ता है मार्केटिंग में हर जगह आना, सो शी वर्किंग सो हार्ड,
1: यस यू कैन टेल
0: उनकी इतनी हिम्मत है यहाँ हमारी अभी लाइक यू नो इसी सोचते हैं कि बहुत हार्ड वर्क कर लिया शी स्टिल वर्किंग कंटिन्यूअस, सो इनको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा इनकी पूरी टीम
2: बिल्कुल बिल्कुल
0: जो इस यू नो एफर्ट्स को इतनी दूर तक लेके आ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं उसको आगे ले जाने के लिए, तो सभी से मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा, तो 4 अक्टूबर को जो वेस्ट जो प्रोग्राम करने जा रहे हैं वहाँ सब आए, तो बाकी टाइम और सुनीता जी बताएंगी
2: जी क्या क्या जी वही हम मैं पूछना चाह रही थी कि आपके शुरू कितने बजे होगी और कितने बजे तक ये प्रोग्राम चलेगा वहाँ पर?
3: नहीं सुबह 9:30 हमारी 9:30 सेशन चालू हो जाएगी।
2: अच्छा,
3: तो उसमें उनके बिब नंबर हैं और टी शर्ट्स मिलेगी पहन के वो जाएंगे।
2: अच्छा,
3: 11 बजे रन शुरू होगा, 11:30 बजे वॉक शुरू होगी।
2: अच्छा अच्छा,
3: और आप जल्दी से आएंगे टाइम पे आएंगे तो सारी चीजें टाइम पे
2: शुरू होंगी,
3: क्योंकि पार्क को हमने रेंट पे लिया हुआ है सिटी से और सिटी भी हमारे को हेल्प कर रही
2: है,
3: और जैसे ही वॉक वगैरह खत्म होगी तो जिन्होंने 90 डेज हमारे साथ चैलेंज में हिस्सा लिया और मैं खुद एक्साइटेड हूँ कि कल रिजल्ट मिलेगा तो सबको सबके सामने हम इनाम देना चाहते हैं,
2: इसके
3: बारे में सब जने सोचे और फिगर ना करें, चाय भी होगी, थोड़ा खाना पीना भी रखवाया गया है, फन प्रोग्राम भी,
2: फन प्रोग्राम
3: थोड़े गाने भी है, डांस भी।
2: अच्छा अच्छा,
3: MLAs हैं जो स्पीच देंगे, लीडर हैं कम्युनिटी,
2: बिल्कुल
3: क्योंकि हम टुगेदर करना चाह रहे हैं,
2: yeah,
3: तो कहीं के भी हो हम मिलकर रहना चाहते हैं,
2: इससे इनकरेजमेंट मिलती है।
3: और हमारी नईम भाई साहब से भी बात हुई जो एंडिया मॉस्क है उनके सामने, तो उन्होंने भी बोला
2: oh, गुड
3: हेल्प करेंगे गाड़ी पार्क,
2: दैट्स सो नाइस, या दैट्स सो नाइस,
3: तो आप लोग सुबह 9:30 तक
2: पहुँच जाए ताकि
3: टाइम पे सब कुछ
2: सब कुछ
3: तो आप लोग इंजॉय कर सकते
2: yeah,
3: और अगर आप वॉक नहीं कर सकते 5K आप एक राउंड कर लीजिए और जो लोग वॉक कर रहे हैं उनके लिए चीयर करें, तालियां बजाएं, उनको हौसला दे कि चलो
2: राइट।
3: और मैं इतनी हैरान हूँ कि 30s लोगों ने रन के लिए लिखा है, तो वो रन करेंगे तो मैं देखना चाहती हूँ
1: जी जी। तो अपना सुने था, आपने 3 महीने पहले शुरू किया था जब आप पूरी टीम आई थी, 3 महीने हो गए, तो आपने ऐसा एक्सपेक्ट किया था कि ऐसा होगा, कैसा फाइनल रिजल्ट होगा, इतना एक्साइटमेंट होगा, ऐसा
3: सोचा ही नहीं था कि लोग इतना उसको सीरियस लेके कर रहे हैं काम,
2: बड़ा अच्छा
3: लगा कि चलो 100 में से अगर 10 बंदे ने भी हेल्थ की तरफ ध्यान दिया तो आप सोचे अगर आप हेल्दी रहोगे तो मेरी तो एक ही चीज है कि हॉस्पिटल पे भार कम होगा, गवर्नमेंट के ऊपर भार कम होगा, जैसे बोलते हैं ना हेल्थ इज वेल्थ, अपने ऊपर थोड़ा इन्वेस्ट करो। हमने अपने दादों को पेरेंट्स को देखा था सुबह शाम वो अपनी हेल्थ को लेकर वॉक भी करते थे, योगा भी करते थे, वो मैं चाहती हूँ कि हम
2: स्पेशली
3: फैमिली साथ चल के सबके बच्चे साथ, जो हम आजकल देख रहे हैं वो नहीं हो पा रहा, इसलिए मैं
2: जी बिल्कुल। तो ये वॉक जो है ये जो 3 महीने का आपका जो था उसके खुशी में ये वॉक हो रही है या आप हर साल या फिर आप करते रहते हैं ये
3: करेंगे?
2: अच्छा, इसके बाद
3: इतना
2: हौसला, आई सी अच्छा अच्छा, इसलिए
3: प्रोग्राम बन रहा है कि वॉक तो नहीं होगी,
2: कुछ और कर सके।
3: एक और किसी ने हमारे को बोला है कि मैं वॉक की प्रैक्टिस भी करवाता हूँ,
2: ओह नाइस,
3: वो भी आपको उस दिन वहाँ मिलेंगे और हम सबको इंट्रोड्यूस कर,
2: दैट्स ग्रेट। अब तो नई चीज वो आई है ना, टाई ची वॉकिंग है ना, उसके ऊपर बहुत जोर है, तो जब मैंने उसको ट्राई करने की कोशिश की मैंने कहा इसमें तो कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है, लेकिन it's such a good thing to do, we think ye 7 minutes ki tai chi walk is nothing but it does help your whole body, that is
4: everything,
2: it does.
3: Wake up, go to outside,
2: 15
3: times if you have a breathing
2: down,
3: for 5 minutes you energy.
4: It's also part of self-care.
2: Yeah,
4: self-care works on oxytocin,
2: yeah,
4: that is the hormone which activates the self-love. So अगर हम उसको activate करते हैं तो हमारी life में खुशियाँ आती
2: हैं.
4: तो थोड़ी सी movements अगर खुशियाँ आ रही हैं तो हमें लेनी चाहिए.
2: क्यों नहीं करनी चाहिए?
1: Yes, please.
2: Yeah, please.
0: Friend Australia, New Zealand.

0: तो वहाँ हर साल होती है अबाउट 5,000 पीपल गोज देयर वो हर साल उसमें पार्टिसिपेट करता है हया तो क्यों पालम की तरह भागता है कहते हैं यू नो यही तो वहाँ की एक खासियत है न्यूजीलैंड के अंदर हमारे यहाँ पे क्या है कि हम कल्चर में इतना ज्यादा वो नहीं वहाँ सब मिक्स कल्चर में करते हैं तो हमारे वेदर के हिसाब से अब ये समर समर ही होती है तो यू नो दैट वहाँ पे जब मैं उनको देखता हूँ तो अच्छा लगता है तो सुनीता जी ने बोला ये हम ये कर रहे हैं
1: तो नाजिया यू नो लाइक यू नो लाइक एज अ मेंटल थेरेपिस्ट यू नो तो व्हाट्स द रिलेशन बिटवीन इफ यू आर वॉकिंग इन द गार्डन इफ यू लाइक वेयर यू आर वॉकिंग एवरी डे एंड विथ योर ब्रेन इससे क्या मिलता है क्या फर्क पड़ता है क्या इसमें हमारे ब्लड मूव क्या होता क्या है कि हमें अच्छी अच्छी लड़कियां देखने मिलती क्या होता
2: है
1: कम टू द पॉइंट
2: वो भी तो एक और
3: मैं बताऊं कि मैं क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ एक लाइफ कोच हूँ ऑथर हूँ और टेडएक्स स्पीकर भी हूँ
1: तुम्हारे लिए कुछ भी छोड़ दो
3: इंट्रोडक्शन आपने पूछा नहीं तो मैं खुद ही दे रही हूँ सो बेसिकली न्यूरोलॉजी अगर आप बात करते हैं एनीथिंग अबाउट नर्वस सिस्टम और अगर आप फिजियोलॉजी की बात करते हैं तो ये कनेक्टेड है आपका ब्रेन जो भी फील करता है जो महसूस करते हैं आपके थॉट्स इसी तरह आपके ब्रेन आपकी बॉडी उसको रिस्पॉन्ड करती है आपके इमोशंस जो भी आप गो थ्रू करते हैं डेली लाइफ में आपकी बॉडी उसको होल्ड कर रही है मूवमेंट और वॉक से वो रिलीज होता है इसी तरह हम अपने एंडोर्फिन्स और सेरोटोनिन व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्ट्रेस सो स्ट्रेस जब एक्यूमुलेट बॉडी में हो जाती है तो हमें सारे जॉइंट प्रॉब्लम्स स्टिफनेस आ जाती है सो मेंटल हेल्थ के साथ साथ फिजिकल हेल्थ बहुत ज्यादा अलाइन है दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं अगर फिजिकल हेल्थ आपकी फिटनेस है किसी को भी अगर स्ट्रेस है तो उसका स्ट्रेस टेस्ट ट्रेडमिल पे ही लिया जाता है चेक इट आउट राइट सो फिजिकली अगर आपको स्ट्रेस है मेंटल स्ट्रेस है तो उससे पता चलता है तो एनी ग्राफ विच इज अराउंड योर मेंटल एक्टिविटी एब्सोल्युटली इफेक्ट्स योर फिजिकल एक्टिविटी तो जहां आपका जो आपका जिस्म है आपकी बॉडी मूव हो रही है वैसे ही आपका दिमाग और जैसे आपका दिमाग काम कर रहा है वैसे आपकी बॉडी का रिजल्ट सो दे आर इंटरलिंक्ड इट्स लाइक टू पॉज एंड पी
1: यस यस यस ओके
2: या दैट्स ग्रेट सो यू आर doing this just you have been with them before or you are just being
3: recently we met at a meeting at the office
2: oh and, I see okay
3: hum baat kar rahe the aur mera perspective tha to maine kaha mental health ye nahi ki main depression aur anxiety ki sirf baat karu lekin main bahut khud ek advocate hu physical health ko lekar mujhe acha lagta hai ki agar aap mental health aur physical health ko combine karenge to aapki life mein jo wo peace aata hai aur aap jo look kar rahe hain to wo hamari ek discussion hui तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि आप पार्ट बन जाए फिर मैंने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया जैसे ये कर रहे
2: हैं
1: देखो आप उन्होंने आपको इनवाइट किया आप हमारे शो पे आ गए
3: आपने पहले से ही भेजा हुआ था मैसेज कि यूनिवर्स में कि नादिया को आना चाहिए
1: तो अर्जुन भाई यू नो व्हेन वी टॉक अबाउट लाइक यू नो व्हेन यू गो टू योर क्लिनिक तो आपके पास ज्यादा केसेस क्या आते हैं आपको ऐसा होता है कि मैं मारू उसको पकड़ के ऐसा कोई भी होता है
4: कोई कोई तो आ ही जाते हैं
1: बट मोस्टली कैसे कैसे जाते हैं
4: मोस्टली ये मस्कुलोस्केलेटल क्लिनिक है लाइफ मार्क फिजियोथेरेपी विलेज स्क्वायर में हूँ बोन्स जॉइंट्स फ्रैक्चर
1: राइट
4: स्पाइनल प्रॉब्लम डिस्क प्रॉब्लम जो नर्व्स के बोलते हैं ना नस
1: दबाएगी
4: मसल्स टेयर लिगामेंट टेयर स्पोर्ट्स पर्सनल एल्डर पर्सन फॉल इंजरी टोटल हिप रिप्लेसमेंट नी रिप्लेसमेंट सारे किस्म के जितने भी मस्कुलोस्केलेटल इंजरीज हैं उनके इन अ वे एक 18 साल से लेके नए फिजियोथेरेपिस्ट तक हम 13 फिजियोथेरेपिस्ट की टीम है उसी क्लिनिक में इट्स अ बिग क्लिनिक 35 बेड क्लिनिक सो
1: यू नो लेट मी आस्क यू दिस वे अभी जैसे जो आजकल जो अपना छोटे बच्चे हैं
4: जी
1: जब वो आंख जो अपनी खुद आईस जो चेक कराने आते हैं उनको नॉर्मल प्रिस्क्रिप्शन होता है ना अपना सिंगल विजन विच वॉज नॉर्मल जो होते नाउ द डॉक्टर आर प्रिस्क्राइबिंग मायोपिया जो दैट्स अ स्पेशल लेंस लेकिन उनकी आंख ही वीक हो रही है बिकॉज दे आर ऑन द स्क्रीन मोस्ट ऑफ द टाइम तो उनका अगर मायोपिया क्या करता है कि इट जस्ट गिव यू फोकस इन वन स्मॉल होल देन दे आर लुकिंग थ्रू दैट होल तो उनकी आंख उससे बेटर होती है यू नो दिस एज इन योर केस तो मोस्टली केसेस आर लोग उठते नहीं है बैठे रहते हैं क्या होता है

0: 16 something it's all because of that screen.
1: Yes,
0: cervical, thoracic, all your postures are continuously being on the screen. Exercise नहीं है, activities नहीं है. तो definitely ये सब देखने को मिलता है और इसके लिए basically हम education ही करते हैं.
2: Of course, we need awareness. That's what you do. Yeah, yeah.
0: Not just kids but parents as well.
1: Yeah.
0: ये सबसे एक बड़ा category है जो हम देखते हैं
2: किसी से.
0: तो general exercises, walking.
2: Do you have to do it every day now?
0: Exactly.
2: Yeah, you have
0: to. जब walk करते हो, just the walking के लो चल के क्या हो जाता है? So it's just walk. It's gonna make a difference.
2: Right? Yeah, yeah.
0: But अगर आप जब movement कर रहे हो, imagine करें आपके पैर move हो रहा है, blood circulation move हो रहा है, muscles move हो रहे हैं, joints move हो रहे हैं, आप बाहर जा रहे हो, दुनिया से connect हो रहे हो. In a way, environment surrounding se connect.
2: Yes.
0: More of the mental feeling as well.
2: Mm-hmm. Yes.
0: It's a lot things, of benefits. Lots of benefits.
2: Wow.
0: They say Dr. Dupan ne bataya, I'm like, I'm in.
2: Yes. No, no, no.
1: Good
2: thing.
1: For you.
0: Yeah.
1: ये तो अच्छा है ना कि अगर जो लोग वॉक करें और किसी को कुछ समझ नहीं आ रही हो कि भाई क्या हो रहा है मुझे और मैं ठीक नहीं कर सक रहा तो यू आर देयर टू हेल्प आउट कि भाई या बिल्कुल
0: नोबडी एवरीबॉडी कम आउट हेल्दी या बट जस्ट इन केस समथिंग या एंकल इंजरी बैक पेन व्हाटएवर या टेपिंग इज नीडेड मोर सपोर्ट नीडेड एनीथिंग
2: अमेजिंग.
1: That's great. Yeah, good to know.
2: तो अपना संजीव भाई आपकी जो है अपना ऑर्गेनाइजेशन what else are they doing right now? Anything in the future for the community? You know, in general.
3: Yes, अभी October 31st को हैलोवीन आ रही है.
2: Yes.
3: उसके बाद क्रिसमस है.
2: Yes.
3: Right. अभी कुछ दिन पहले ही हम अपने जितने बुजुर्ग थे about 40 मैं सबको बैंफ लेके गया.
2: Oh yeah.
3: टीम सारी सीनियर्स जितने भी थे.
2: Oh, that's nice.
3: एक अच्छा लगा यू नो आउटडोर उनके लिए. उन्होंने पहले अगर आप हमारे इवेंट में उस टाइम नहीं आ सके या जो भी हुआ मैं माफी चाहता हूँ उसके लिए पहले आपसे.
2: चलो रेन चेक दिया आपको.
3: नहीं उसके हुआ क्या था अगर आपने जिसने भी इवेंट देखा उस दिन
2: जी
3: सो जो हमारे मोस्ट वॉलंटियर थे वो सीनियर थे वहाँ पे.
2: अच्छा अच्छा.
3: हमें अबाउट 50-60 वॉलंटियर चाहिए थे तो उन्होंने बहुत चीजें ऑर्गेनाइज की. दैट वाज माय ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ देम. तो मैं उनको यहाँ से कैनमोर लेके गए. कैनमोर में उन्होंने स्पेशल ब्रेकफास्ट किया. मैंने उनको खुद बना के खिलाया ब्रेड वगैरह सब क्रिएट किया. मैं आप खाओ आज हम आज काम करेंगे. तो हमारे साथ जो हमारे टीम मेंबर थे हमारे विवेक महाजन जी और तो उन्होंने ये सब हमने तीनों ने मिलके ये सब प्रिपेयर किया. तो लाइव उनको फूड बना के फ्यूचर इन दैट क्रिसमस आल्सो ही गोइंग टू.
2: जी जी. आज का जो शो इसको स्पॉन्सर है कंट्री स्टोर. कंट्री स्टोर इनका फोन नंबर 4032901111. मोबाइल मोड का स्पेशलिस्ट रूबीना कासिम अली 4038707069. केयर सर्कल हेल्थ होम कैलगरी 5879290. हमजा बट फ्रॉम द बटकड़ा है बैंकट हॉल 5873520094. नसीन ज्वेलर्स कैलगरी 8259875000. आयजबा बशीर 4037203937. अगर आपका गैराज का दरवाजा टूट गया है संजीव भाई यू कैन कॉल वावेसी स्प्रिंग किंग्स गैराज डोर रिपेयर कैलगरी. हमारा लाइक अवर गुड फ्रेंड फैजल प्रेम जी 4033335656. अब मेरा नाम नहीं लेंगे आपको स्पेशल प्राइज भी मिलेगी. यस यस यस यस. तो आई थिंक सुनील जी यू नो आई लव यू ऑल योर टीम. माशाल्लाह आप जो काम कर रही है बस अल्लाह आपको और हिम्मत दे. ये जो हम बात सुन रहे हैं यहाँ पे मेंटल हेल्थ है फिजिकल हेल्थ है कम्युनिटी का इतना है व्हाट यू डूइंग आप सब मिला के सबको एक साथ ला रही है. आपके टीम को आपके बेटे को आई नो हिकेम लास्ट आपकी जो है अपने शमा कपूर को पूरी टीम को बस अल्लाह आपको और हिम्मत दे. इस तरह आप लगे रहे हम भी आपके साथ हैं. आपने नाराज नहीं होना मुझसे. मुझसे नाराज होकर कहाँ जाएंगी. एग्जैक्टली मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक. नहीं
4: हम चाहते हैं कि सब लोग स्ट्रॉन्ग
2: जैसे
4: तो हम चाहते हैं कि हम सब साथ मिलकर चलें. जैसे संजीव जी ने बताया कि
1: बहुत अच्छा कर रहे हैं उन्होंने.
4: आप यहाँ पे दौड़ रहे हो हम साथ में वॉक कर रहे हो हेल्थ
2: मे बी नेक्स्ट इवेंट इंशाल्लाह आप वॉक कर लें फिर हम कॉन्सर्ट करेंगे फ्री सबके लिए.
1: बिल्कुल क्या बात है.
4: और आपके तो वैसे भी अच्छे होते हैं. लास्ट वाले भी 3 अक्टूबर वाला सुबह उठ के 7 बजे पार्क में पहुंचे.
2: आई नो
1: या
4: बल्कि आप माफ करिए मुझे।

0: बेसिकली
1: कम्युनिटी की बात हो रही थी. मैं एक्चुअली नेपाल से हूँ.
2: ओके.
1: मेरी कम्युनिटी नेपाली एसोसिएशन, उनको भी मैंने अप्रोच किया है. वर्किंग ऑन इट एज
0: गुड फॉर यू.
1: पांच पीपल.
2: अच्छा.
1: सारे ईमेल सर्कुलेट हो चुके हैं जितने भी मेंबर्स हैं सोसाइटी.
2: जी जी.
1: दो एसोसिएशन है, साउथ में और एक नॉर्थ में. दोनों में सारे कुछ सर्कुलेट हो चुके हैं.
2: अच्छा.
1: तो होपफुली वी विल सी मोर
0: लॉट ऑफ पीपल. या
2: तो यू नो ऑन अ सेम नोट, आप उनको जानते हो ध्रुवा रॉय को?
1: ध्रुवा रॉय.
2: या
1: जी बिल्कुल.
2: तो दे केम आउट टू अवर शो 15 years ago, जब उनका खुद का शो नहीं आता था, they came here, उनका जो बॉलीवुड इवेंट हुआ था at the McMahon Banquet Hall. So we did the show, we know each other very well.
0: Yeah,
2: we are. So
0: thank you so much for
2: that. Thank you.
0: Yeah.
2: We'll get you back.
0: Yeah. Thank you. Allah Hafiz. आपसे मुलाकात होगी कल कॉफी विद जलाल में.
2: Yes, तो इंशाल्लाह करोगा. आज यू नो वी गोना टॉक अबाउट द पाकिस्तानी ड्रामास टुमारो, सो डू नॉट फॉरगेट टू जॉइन 8 टू 9 पीएम राइट हियर ऑन रेडियो सुसंगम 94.9 एफएम. इंशाल्लाह वी विल टॉक टू यू टुमारो. थैंक्स फॉर वाचिंग एंड लिसनिंग. सलाम नमस्ते ऑन रेडियो सुसंगम 94.7 एफएम.
3: द टाइम इज 9 पीएम.
4: You are listening to Fairchild Radio, CHKF FM 94.7, a multicultural radio station in Calgary.